0: A scuffle broke out during a CJP protest in Delhi with multiple police personnel injured in the clash. Visuals from the spot show police trying to control the situation as the protest turned chaotic. Police personnel were seen in a scuffle with protesters while some CJP supporters were detained. Stone pelting was also reported during the protest at Connaught Place. Visuals show protesters hurling stones at police personnel, with mass protesters also seen carrying sticks. Women police personnel were also among those injured. The incident has left several policemen hurt, with the visuals capturing the clash and the police response during the protest.
1: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
2: बस एक बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे, जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिश पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चला है, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
1: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
2: यहाँ सीजी हुई है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है नी। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
3: ने आपको हाथ मरोड़ा क्या, वो आप बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
4: सर, डिटेन तो किया है, अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
3: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
4: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
5: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था लेकिन उसने मेरे को धक्का दे के, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
6: जाने तब तक डटे हुए जब तक, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं,
5: अब बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: India has entered the Fly Dubai investigation. The NIA has filed a terror case as Captain Smith recovers and Hamami's Australia links come under scrutiny. NIA has stepped in and will now examine whether Hamami acted alone or as part of a wider module and trace any international conspiracy behind the attack. The National Probe Agency has invoked sections under Anti-Hijacking Act and UAPA. Investigators are now piecing together Hamami's entire trail to establish whether he acted alone and how the alleged plot escaped multiple security checks. This is now a rare cross-border investigation combining criminal counter-terror aviation safety tracks across countries connected to the flight. Some latest news coming in. New images show Captain Smith in hospital. He's seen smiling with the head still bandaged. Captain Smith seen reading Herzog's letter. Israel President salutes Smith's courage. Israel President has thanked Smith for averting a major tragedy. That's the word coming in. The new images on your screen right now. We'll try and connect with my colleague as well to get more perspective on the story. But from across the world, wishes have been coming in. As far as Captain Smith is concerned, the entire world has been wishing him a speedy recovery. He also had a call with Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. Prime Minister of India also gave him a call. Joining us on the broadcast is my colleague Aditya Raj Kaul to give us more perspective on the story. Aditya, wishes have been pouring in from across the world for Captain Smith. New images showing him recovering well.
7: Well, certainly new images now coming in showing Captain Smith recovering very well. It's been a few days in the hospital ever since that really disaster that happened on the Fly Dubai flight on the 30th of September. And now the Israeli president has also written to Captain Smith Machar a personal letter, you know, praising his bravery. In fact, naming him as an Indian troop in action who saved the lives of countless people.

0: of the blockade. You remember, U.S. has also put a blockade there against the blockade of Iran. So there is confusion there. And this, if we talk about Strait of Hormuz, it is not the ideal route right now for any vessel to take. And here, Iran has taken a step.
1: Absolutely. You know, the Strait of Hormuz, Rishabh, remember, is now dubbed as a geopolitical choke point, a bargaining chip when it comes to Iran. It helps them bargain with the United States. And it remains to be seen what truly happens in the Strait of Hormuz. But Iran there issuing a caution and important statement to all the ships transiting through this very crucial oil strait. Well, with that, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. Do stay on with us on the broadcast.
2: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है. तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज.
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्टियल मसाला.
9: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से.
10: देश का टायर जेके टायर.
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले जनरल डेविड पेट्रियस

0: तो वो रिस्पॉन्सिबल।
1: क्या हुआ उतने देर में और क्या सिचुएशन थी यहाँ पे?
2: बस 1 बजे, 1 बजे के करीब भीड़ आई है उधर से गुरुद्वारा काबगंज की तरफ से इम्तियाज खान मार्ग पर, और वो शाउटिंग कर रहे थे और गाली गलौज दे रहे थे, है ना, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे। जो हमने किसी तरह वो बैरिगेट पे चढ़ाई की, उसको तोड़ने लग गए, है नी। फिर हमने जो है ना वारिस पे मैसेज किया, री इन्फोर्समेंट आई है यहाँ, कम से कम 15-20 मिनट संघर्ष चलाया, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आम पब्लिक को परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने वो नहीं होने दी।
1: सर, आप लोगों को चोट भी आई है इस पूरे ऑल्टरकेशन में?
2: उंगलियां सीजी हुई है, है ना, ये उंगलियों पे चोट लगी है, बैरिगेट भी गिर गए थे हमारे, है ना। लेकिन उसके बाद ही हमने अपना पेशेंस नहीं खोया और उनको प्रॉपर तरीके से, इवन वो बैरिगेट पे चढ़ गए थे, उन्होंने वो हमें लाते मार रहे थे, लेकिन हमने उनको उतारा कि भाई इनको कोई चोट ना लग जाए, ऐसी इंजरी ना लग जाए, है कि नहीं, जिससे इनकी लाइफ को कोई खतरा हो जाए।
3: जिन लोगों ने आपको हाथ मरोड़ा, क्या वो बाद में पकड़े गए या निकल गए थे वहाँ से?
0: सर, डिटेन तो किया है। अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो पहले भीड़ में इतना नहीं पहचान सकती कौन सी लड़की थी वो, पर भीड़ में चोट लग गई थी मुझे उसी टाइम, उन्होंने हाथ हो गया था।
3: लगातार दिखने में आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग हो रहा है इस दौरान ड्यूटी करना?
0: सर, ड्यूटी तो देखो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तब भी हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई हमें ऐसे, हमारे साथ ऐसी बदसलूकी ना करें, क्योंकि हम भी अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, अपने ड्यूटी भी कर रहे हैं, किसी को उल्टा भी नहीं बोला हमने प्रोटेस्ट में, यही कहा कि भाई यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें।
4: अकेला था, मैं एक ही आदमी को रोक रहा था, लेकिन उसने मेरे को धक्का दे के, मेरे ये हाथ पे चोट लगी और कमर पे लगी हुई है, हमारी यहाँ जरूरत है, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन अब मैं
5: तो जाने तब तक डटे हुए जब तक, हाँ, हालांकि चोट खा के भी आप डटे हैं।
4: अब बिल्कुल डटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारी जरूरत है।
0: All right, let's now take you through some more developments coming in. Now, Vijay and Rahul Gandhi's cafe meeting has triggered contrasting political reactions, with TVK and Congress welcoming the interaction, while the BJP took a satirical swipe at the meeting and its political messaging. In an imagined conversation, in fact, Vinod Selvam targeted Vijay over the CJP protests, mocked Rahul Gandhi's pitch on democracy, and even took a name at Congress's record of electrification, turning the meeting into fresh political ammunition. Congress, meanwhile, hailed the alliance and the unique bond between the two leaders. The party even described the meeting as a positive political signal, highlighting its significance for the India bloc and the broader opposition unity narrative. TVK state chief said that Vijay would not adopt the BJP-RSS ideology, asserting that politics would remain focused on people's interests. He also revealed that the two leaders discussed education during the meeting that they had yesterday.
6: ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ अलायंस है और आप जानते हैं विजय कुमार जी और राहुल जी का एक रिश्ता है जो एक अलग सा है, तो उन्होंने उनके घर पे मुलाकात की और फिर आपने देखा किस तरह से वो वेलकम किया गया है। हम समझते हैं ये अच्छे संकेत हैं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, पूरे देश के लिए।
0: All right, moving on now to more updates that we're tracking early this morning. Tamil Nadu Chief Minister and TVK Chief C. Joseph Vijay is set to meet the Prime Minister Narendra Modi during his visit today to Chennai. Now, Prime Minister Modi, remember, is in Chennai for an official program. His visit puts the focus on Centre's engagements in Tamil Nadu and his scheduled interaction with the Tamil Nadu Chief Minister. Now, the Prime Minister and Vijay are scheduled to take a metro ride as part of the Chennai program, with the city's transport infrastructure in focus. Tamil Nadu Chief Minister Vijay is also set to attend the Prime Minister's event in Chennai, where development projects are expected to be unveiled. All right, we're tracking some big breaking news coming in early this morning. We're understanding that the Kokru Janta Party has now issued a very important statement. This statement pertains to the three top leaders who were detained yesterday, Abhijit Dibke, Ashutosh Ranka, as well as Saurabh Das. The Kokru Janta Party's legal head, Ratna Singh, says that these three leaders will be produced before the executive magistrate at the Delhi Cant police station at about 9 a.m. today. Well, a Delhi police official has informed Ratna Singh, who, remember, is the legal head of the Kokru Janta Party. Now, she's gone on to issue a statement to say that she will be physically present at the police station along with other advocates. So big breaking news that we're tracking for you early this morning. Remember that the three leaders who were coming to Jantar Mantar yesterday and had landed in the national capital were detained by the Delhi police from inside the aircraft.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
7: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
9: हर बार वही gold jewelry कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
10: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
11: वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ द एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया जापान समिट।
12: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
13: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
14: How do you see the India-US relationship prosper?
15: I think God was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
14: Abe spoke about India and

0: morning and bringing us those crucial updates. Alright, let's now take you to Uttar Pradesh. Ayodhya, remember, has emerged as a political flashpoint in Uttar Pradesh with the BJP's Ram Temple narrative and the opposition's electoral challenge back in focus. Ayodhya's symbolic importance has placed it at the center of BJP's Hindutva politics, making it a key battleground in the state's political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has now challenged the Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya, questioning the BJP's confidence in its political stronghold. Now, Akhilesh Yadav has accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly, bringing local grievances into the political debate. Yogi Adityanath, the Chief Minister, has referred to Akhilesh Yadav's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter challenge. Yogi Adityanath has proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and then test their political fortunes. So, of course, the big face-off that we are seeing between the BJP and the Samajwadi Party in Uttar Pradesh, which, remember, is slated to go to polls soon.
1: करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर के दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
2: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लिए प्रदेश में एक नई सीट की तलाश कर रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सुझाव दिया कि वो अयोध्या से चुनाव लड़के दिखाएं और उन्होंने उस सुझाव को मान लिया है। तो अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हैं पवन पांडे, और पवन पांडे योगी आदित्यनाथ को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हुई है, हजारों करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। भगवान राम का मुकुट, उनकी माला, उनकी गदा और चरण पादुका चोरी हुई है। चुनाव में ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन राम भक्त है और कौन राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाला व्यक्ति है।
0: Moving on to more updates for you. Well, India, remember, has entered the Fly Dubai probe as Captain Smith recovers and Himami's Australia trail now comes under scrutiny. The NIA, remember, has registered a case under the Anti-Hijacking Act and the UAPA and will test whether Himami acted alone or was a part of a wider conspiracy. UAE investigators say that Himami was radicalized in Melbourne in 2017. He even used two Tel Aviv flights for recce and intended to target the Ben Gurion's passenger terminal. Fresh hospital images even show Captain Smith smiling despite his bandages and reading a letter from Israel's president, commending his bravery and even inviting him to visit Israel. Alright, now moving on to more updates for you. Well, from the angry young man to a legend who continues to reinvent himself, Amitabh Bachchan's journey is unlike any other in Hindi cinema. As a superstar turns 84, we look back at the remarkable career spanning 57 years and a legacy that continues to inspire generations to come. Take a look at the special report that gives a tribute to the superstar.
4: इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है।
5: कौन हो तुम?
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई

0: जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
1: जिंदगी में कुछ बातें फायदे और नुकसान से ऊपर होती हैं, लेकिन ये बात कुछ लोग नहीं जानते।
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
3: हिंदी सिनेमा हैज गिवन अस सुपरस्टार्स, आइकन्स एंड लेजेंड्स, बट वंस इन अ जनरेशन देयर कम्स एन एक्टर हु बिकम्स समथिंग मोर, अ वॉइस दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: A face that can hold a million memories, a presence that transcends the screen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर। This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
4: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
5: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
6: एक परिवार, अटूट भरोसा।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड द वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd एंड 23rd अक्टूबर, ओनली ऑन एनडीटीवी।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ द एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया जापान समिट।
11: डीप लोकलाइजेशन, व्हाट डज इट एसेंशियली मीन फॉर मारुति सुजुकी?
12: टू बी कॉम्पिटिटिव एंड टू बी जाइल फॉर डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस टू एनी डिसरप्शन। सो दैट्स हाउ वी सेट दिस डीप लोकलाइजेशन एज आवर next challenge.
13: How do you see the India-US relationship prosper?
14: I think what was an important basis, when people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
13: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
15: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
13: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
16: Quad could be a catalyst rather than just a forbinger. Quad could be a facilitator of growth, security and development in the region. Then Quad will have more meaning to itself.
17: Joint declaration on economic security, how is that being guaranteed or protected between India and Japan?
18: Unless India and Japan were to work together, it would be virtually impossible to create a trusted strategic technology stack for Asia.
19: AI, deep tech, those technologies are reshaping the industry worldwide. In this context, India and Japan, large potential.
20: We can truly tell that the economic partnership between the two countries is now moving from old economy to new economy.
21: It is our absolute honor to invite our chief guest for the evening, Mrs. Aki Abe, for her keynote address.
22: Today, you held a wonderful India-Japan summit. For me, it was a very meaningful day. Thank you very much for inviting me.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
4: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
5: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
6: एक परिवार, अटूट भरोसा।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
8: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डिकोड द वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉश, निकोलस बक्स, एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd एंड 23rd अक्टूबर, ओनली ऑन एनडीटीवी।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ द एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया जापान समिट।
11: डीप लोकलाइजेशन, व्हाट डज इट एसेंशियली मीन फॉर मारुति सुजुकी?
12: टू बी कॉम्पिटिटिव एंड टू बी जाइल फॉर डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस टू एनी डिसरप्शन। सो दैट्स हाउ वी सेट दिस डीप लोकलाइजेशन एज आवर next challenge.
13: How do you see the India-US relationship prosper?
14: I think God was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
13: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
15: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
13: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
16: Quad could be a catalyst rather than just a forbinger. Quad could be a facilitator of growth, security and development in the region. Then Quad will have more meaning to itself.
17: Joint declaration on economic security. How is that being guaranteed or protected between India and Japan?
18: Unless India and Japan were to work together, it would be virtually impossible to create a trusted strategic technology stack for Asia.
19: AI, deep tech, those technologies are reshaping the industry worldwide. In this context, India and Japan, large potential.
20: We can truly tell that the economic partnership between the two countries is now moving from old economy to new economy.
21: It is our absolute honor to invite our chief guest for the evening, Mrs. Aki Abe, for her keynote address.
22: Today, you held a wonderful India-Japan summit for me. It was a very meaningful day. Thank you very much for inviting me.

0: वेल डन किड्स, आज दिन की शुरुआत हुई है बच्चों की आवाज से, इससे खूबसूरत दिन कैसे हो सकता है?
1: एब्सोल्युटली आयुष्मान, और ना सिर्फ आज का दिन, ऑफ कोर्स इज गांधी जयंती, लेकिन इनका जुनून देख के, यू नो, सीइंग द एक्साइटमेंट इन देयर वॉइसेस, हमें ये पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोना कीप अस सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू सो मच बच्चों.
0: थैंक यू किड्स,
1: बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
0: ये मुझे लगता है बनेगा स्वस्थ इंडिया से बनेगा मस्त इंडिया हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य गाकर गया अभी सामने हमारे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन है, वो इंसान जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है. और आज इसी दिन हम एक ऐसी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पिछले 12 साल से लिखी जा रही है.
1: बिल्कुल सही आयुष्मान, वेलकम टू सीजन 13 ऑफ द एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन. नाउ मोस्ट कैंपेन्स कम एंड गो. आयुष्मान, एक स्लोगन होता है, एक सीजन होता है, और फिर सब भूल जाते हैं. बट दिस वन हैज स्टेड, क्योंकि बदलाव एक दिन का इवेंट नहीं होता, बदलाव एक आदत है. एंड हैबिट्स ऑब्वियसली टेक टाइम. 13 years आयुष्मान इज व्हाट इट हैज टेकन टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वे ऑफ लाइफ. और आयुष्मान, ये सफर जब शुरू हुआ था, एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था कि क्या हमारा देश भारत साफ हो सकता है.
0: और फिर इसका जवाब दिया आप लोगों ने, गांव की उन माओं ने जिन्होंने घर में टॉयलेट की मांग की, उन टीचर्स ने जिन्होंने क्लासरूम को बदलाव की पहली प्रयोगशाला बना दिया, उन बच्चों ने जो घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाने लगे, उन आशा वर्कर्स, सरपंचों और सैनिटेशन वर्कर्स ने जिनके बिना ये कहानी अधूरी है. मैं हमेशा उन कहानियों की तरफ खींचा गया हूं जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, पीरियड्स, हाइजीन. ये कैंपेन भी वही करता है. इट स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन India needs to have. We have a long way to go and we need to keep at it.
1: We do have a long way to go and we are keeping at it. Aishman, jaise COVID pandemic se puri duniya ne seekha ki swachh aur swasth dono saath hain. Humne dekha ki hygiene akela sirf kaafi nahi hai. Health obviously is the bigger picture. Aur isliye banega swachh India banega swasth India. Swachhta pehla kadam tha, swasthya manzil hai. Giving better health in more hands every day.
0: Yes, better health, क्योंकि अच्छी सेहत किसी का privilege नहीं है, हर हिंदुस्तानी का हक है. In more hands, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ doctors या सरकार की नहीं, ये एक teacher के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है, एक बच्चे के हाथों में है, और हाँ, आपके हाथों में है, क्योंकि every day, क्योंकि सेहत एक दिन का जश्न नहीं है, रोज की आदत है, क्योंकि अब वक्त है कहने का, I am the change.
1: Absolutely, I am the change. और आपने बिल्कुल सही कहा, it begins with I am the change, जो आपने बिल्कुल कहा. But over the last 12 years, that belief has turned into a movement. So let's take a quick look at the journey that has brought us all here together.
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया क्लीन इंडिया.

0: What we just saw was only a glimpse of an incredible 12-year journey. And as we begin a new chapter, the launch of season 13, I would like to welcome three leaders who've played an important role in taking this vision forward. Joining us virtually is Chris Litt, Chief Executive Officer, Reckitt. Joining us here, we have Gaurav Jain, Executive Vice President, Regional Director, Reckitt South Asia. We also have with us Rahul Kaval, CEO and Editor-in-Chief, NDTV. And we have with us Sonu Sood, actor, producer and philanthropist, someone who's been on the campaign earlier and an integral part of it. Thank you all so much for joining us today. But before we go any further, we have a special message from the health minister of our country.
1: Mahatma Gandhi ji ki jayanti ke pavan avsar par banega swasth India ke 13th season ke shubharambh par aap sabhi ko meri hardik shubhkamnaen. Pichle 12 season se banega swasth India desh mein swachhta, स्वास्थ्य, पोषण, जन जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है. इस अभियान ने स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तक अनेक सार्थक प्रयास किए हैं. मुझे गर्व है कि आज़ादी के दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान दिया और स्वच्छता के महत्व को समझाया. उनके नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का थीम बेहतर स्वास्थ्य ज्यादा हाथों में मुझे अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है. पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए, 12 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जहां पीढ़ियों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी. 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के निवास स्थान के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. आयुष्मान भारत जो योजना है वो 61 करोड़ से अधिक नागरिकों को बीमारी के आर्थिक भार से सुरक्षा प्रदान कर रही है. यह संख्या यूरोपीय संघ के देशों की कुल आबादी से अधिक है. व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के माध्यम से 12 आवश्यक हेल्थ पैकेज दिए जा रहे हैं. टीबी मुक्त भारत अभियान की वजह से भारत में हर साल सामने आने वाले टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है. अपने दूरदर्शी नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है. प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि स्वस्थ समाज का लक्ष्य स्वस्थ सुविधाओं के विस्तार से और जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है. बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा. एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है. स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत, यही विकसित भारत की मजबूत नींव है. मैं बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम को इसके लिए और उनके सहयोगी संस्थानों को 13वीं सीजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. आइए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और स्वस्थ समाज के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का संकल्प लें। जय हिंद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मिशन में प्राइवेट कंपनियां जुड़ती हैं, मीडिया जुड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार की ताकत लगती है तभी वाकई में ज़मीन पर इसका असर दिखता है। इट्स फैंटास्टिक टू बी हियर। I want to go across to Chris Lay, CEO of Reckitt Globally. Thank you very much, Chris, for joining us. And thank you for partnering with NDTV in this very important mission. We're broadcasting live across a country of 1.4 billion people. And your organization's core mission has been better health in more hands every day. But every day is a massive logistical and behavioral hurdle. As viewers watch this telethon, how does Reckitt ensure that basic wellness doesn't remain a luxury for the urban and richest people all across the country, especially in those parts where they need it the most?
3: Well, the question for us is not how we reach 1.4 billion people once, but actually how healthier choices can become part of everyday life for 1.4 billion people. That's a fundamentally different challenge. At Reckitt, we've learned that improving health at scale requires three things. The first thing is access. Better health cannot depend on where you live or what you earn. It requires solutions that are affordable, available, and relevant across diverse communities, say from major cities to the most remote parts of the country. The second element is trust. Sustainable behavior changes happen through healthcare workers, those at the front line, and the leaders in the community who all play a critical role turning health information into action and action into habits. And at Reckitt, we're guided by the simple principle, doing the right thing always. That trust is not built through what we say, it is earned through consistent action, long-term commitment, and delivering meaningful outcomes for communities. And then the third element is prevention. The greatest public health impact comes when we help people stay healthy, not just treat illness. That's why we focus on embedding early healthy behaviors, particularly among children, where small interventions can create lifelong benefits and actually also influence entire families. So ultimately, it takes all those three components to be successful in this mission.
2: 30 million children reached, lakhs of schools impacted across the country. But the question is about outcome. It's not just about outreach. How do you ensure that the outreach that you're being able to deliver is actually leading to measurable outcome, which I know is extremely important for you?
4: I think I would start by saying that as a company, what makes us very different is our result orientation. And we are completely obsessed about results in our daily job. So we don't do things which look fashionable but are not yielding the results. And that's like a philosophy that we have. And we pass on that philosophy to BSI. So whatever results, I mean, I'll tell you some, and you know many of them, is all audited. It's third-party audited, so it's not bunkum or bullshit, which a lot of people might believe. And then we work with very smart people in the government. And I don't think Rahul will be sitting here after 13 years if we didn't have results to show, and all these state governments and central government helping us to extend our programs, it wouldn't have happened. So I think on our first program of the school hygiene curriculum, which has been our longest running, I can tell you results on how hand washing has changed over years and how proper hand washing has happened. But the one metric we look at is absenteeism. School absenteeism, when we started in 2017, was about 36%. In 8 years, it's come down to 20%. Now, that huge difference on this large scale is basically because of two things. One is reduction in diarrhea and pneumonia, which are hand-borne diseases. And so that's a big thing that we track. On our Durex

0: program. We basically track the knowledge that these kids get on condom use and on sexually transmitted diseases. Do they have the knowledge to help prevent that? When we started, that knowledge, the way we track it, was less than 2%. Today, it's gone up to 25%. And what we know from global studies on this subject is that this knowledge is extremely correlated very highly to when they get older and sexually active, to reduction in teen pregnancies and reduction in STIs. So that's something we track. I think we have this program of self-care. We launched it 4 years back. We tested it in 2 districts. And the aim there was to reduce mortality deaths from 0 to 2 years to zero. I think we did that. So we did it for 3 years. We made deaths zero in those 2 districts. The previous 3 years, the number of deaths in those districts was about 1,300. So in some way, you can say we stopped or avoided 1,300 deaths. And now we have taken that to 22 districts in the country, and we hope to achieve the same. On our World Toilet College, we now have 6 of them. We have 25 cities covered. We have trained about 2.5 lakh sanitation workers. We have 90% placement rate. So we get them occupations in, say, hospitals, clinics, hotels, a much better way of living. And we also get them government schemes. So Ayushman Bharat, the Ujjwala scheme, insurance schemes, which they didn't have access to earlier. And what we are trying to do there is reduce that life expectancy cap that we have in sanitation workers with the rest of India. That's a big 10 years.
1: Suno, aap jo logon ki madad karte hain, usse ek alag aapki image banti hai over and beyond just being a star and a famous personality. Are you also trying to encourage others to come? Because A, aapki dekha dekhi koi lag jaye, kaam mein jud jaye. Dusra ye ki aapko lage ki nahi, waqai mein Bollywood ke ya sports stars ho, film stars ho, OTT stars ho, sabko lagna chahiye koi fir ek Sonu Sood nahi, 10-12 ho jate. Aap kaise tay karte ki, kyunki itne logon ko madad chahiye, aap kaise tay karte ki kiski madad kar sakte hain, kiski nahi, aur kisko chhod de nahi kar paye.
2: Itne saalon mein Rahul, ek mujhe lagta hai na hamare andar ek aisa x-ray machine lag jata hai ki jaise hum log baat karne lagte hain to hume pata hota hai ki ye kitna genuine case hai. Aaj bhi mere office mein ghar ke samne 200-300 log pahunchte hi hain. और मैं जब शाम को निकलता हूँ तो उनसे जब मिलते हैं तो किसी की मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, किसी के एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है. बट पिछले 6-7 सालों के अंदर एक नेटवर्क ऐसा बन गया है कि पूरे देश भर में छोटे छोटे जिलों के अंदर भी जहाँ पर किसी को पढ़ाई करनी हो, इलाज करवाना हो, बेड चाहिए, सो फ़ोन करते हैं, जुड़ जाता है. कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था जिनको घर भेजा था. आज वो 7.5 लाख जो लोग हैं वो मेरे वॉलेंटियर्स की तरह हैं कि अगर हमें यूपी में गोंडा जिला में किसी को पहुँचाना है तो मैं गोंडा दबाऊंगा तो वहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे. फिर उनको फ़ोन करते हैं, अरे उसको ये पहुँचा दे. बिहार में किसी को भैंस पहुँचानी हो तो हम लोग वो ढूंढते हैं, तो फिर लड़का एक भैंस ढूंढने जाता है कि कौन सी अच्छी भैंस है जो अच्छा दूध देती है, और उसके साथ बछड़ा भी दिया जाता है ताकि उस जो बाढ़ में वो घर तबाह हो गया उसको एक रोजी रोटी मिल सके. तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल्स होती हैं. आज जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था तो मैं जब सुबह उठा तो मुझे 5:30 बजे मेरा फ़ोन बजा. मैं उठने ही वाला था तो मैंने देखा कि एक किसी का कॉल आ रहा है. मैंने फ़ोन किया तो कहते सर मेरा भाई का जो बेटा है वो PGI लखनऊ के बाहर है, उसको एडमिशन नहीं मिल रही और बहुत सीरियस है, आप कीजिए. तो मैंने मैसेज डाला वहाँ पे डॉक्टर्स को, तो 6:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया और बाय द टाइम आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई हाउस टू दिस प्लेस उसका एडमिशन हो गया था एंड फाइनली ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड. सो मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला चुन लेता है कि ये कुछ कर दीजिए और फिर हो जाएगा एंड that makes your day very special. So I feel apne aap ho jata hai pata nahi, but I ek bada the biggest lesson that I've learned in all these years is ki you know aap favors lene mein katraye mat. You know maine agar aapko ek phone kiya ki Rahul chaliye milke hum uski padhai karaye the yahan,
1: paisa mat mangna bas, paisa nahi hai aur kuch ho to bataiye kya
2: usko ya usko channel mein kahin job lagwa de yaar. agar wo deserve karta hai, agar wo deserve karta hai wo pehle hai to phir you know
3: paisa mangna kisi ye duniya mushkil hai.
2: So idea ye hai ki aap bhi jante hain ki aap मैं उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए मैं इसको कभी जानता नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिए अगर वो डिजर्व करता है. और कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो अपने आप वो डॉट्स जुड़ जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू जॉइन दोस डॉट्स एवरी सिंगल डे एंड समवेयर गॉड इज डूइंग द ट्रिक.
4: गेट रेडी फॉर समथिंग रियली एक्साइटिंग, स्ट्रेंथ, बैलेंस और इनक्रेडिबल मूव्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, मलखम्ब.

0: शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
1: 1000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा?
2: तो पहले आप खाओ ना।
3: आप में से कितने लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो गए?
4: अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू।
5: जरूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाना है।
6: Good morning, Mumbai, and a very warm welcome to ITW Universe presents NDTV UR 2026 Young Voices, Bold Dialogues. Before we begin, can we have a huge round of applause from all of you so that we start with a lot of energy? Lovely. Today is all about young voices, voices that question, create, challenge, experiment, and sometimes simply refuse to accept. Aisa hi hota hai. My name is Arun Singh, and I have my co-host Ranjana as well.
7: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बिल्कुल सही अरुण आपने कहा। देखिए, वो युवा है जो विचारों को मानता है पर विचारधाराओं की सीमाओं से बिल्कुल बंधता नहीं है। और आज कुछ ऐसे ही युवाओं के साथ इस मंच को अरुण हम साझा करने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत पैनल होगा जहां बात होगी एआई से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक की, स्पोर्ट्स से लेकर सिनेमा तक की और कॉमेडी से लेकर पॉलिटिक्स तक की।
8: BMC 570% tax लगाने वाले in theaters that will be played in Mumbai
1: itself. 70%
8: more. So what is your take on that, ma'am?
1: कौन देखेगा फिर फिल्म में? वैसे कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं, सच्ची में अगर फिल्म देखने जाना हो आपकी 2-3 हजार तो easily, 1000 रुपए का तो पॉपकॉर्न है, कौन खाएगा? Going to a theater is such an expensive experience now and it's also very classist, I must say. क्योंकि वो जो single screen है ना, वो खत्म हो गई है, so you've already alienated your audience. There are a lot of people who find going to a theater very intimidating. क्योंकि उनको लगता है कि वो वहाँ पे fit नहीं करते, तो आपने वैसे ही alienate कर दिया and this is like very sad. Exactly. It shouldn't be the case.
9: क्या social media censorship की आज ज़रूरत है?
1: बिल्कुल है, बट ये कैसे करेंगे हम? क्योंकि इतने सारे फेसलेस या तो बॉट्स होते हैं या तो लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, वो आपको क्वेश्चन करेंगे आपके लुक्स के ऊपर, 50 चीज़ों के ऊपर। जब ये वो लोग होते हैं जिनके बायो पे लिखा होता है लिव एंड लेट लिव, पर वो जब भी किसी और के बारे में बात करते बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बात करते हैं। सो आई जेन्युइनली फील इट इज़ टाइम टू टेक अकाउंटेबिलिटी। जब तक वो फियर ऑफ लॉ नहीं होगा ना, वो इंसान बदलेगा ही नहीं। एंड सिर्फ पब्लिक फिगर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली लड़कियां जिनके अकाउंट्स ओपन होते हैं। कितने सारे लड़कों के मैसेजेस आते हैं जो मतलब ख़राब चीज़ें बोलते हैं। हम लोग तो वी आर स्टिल ओल्डर, वी नो हाउ टू टैकल इट, बट जो यंगर लोग है, यंगर जनरेशन है, वो गलत स्टेप ले भी लेते हैं।
5: ज़रूरी नहीं है कि सबको 100 करोड़ 1000 करोड़ बनाना है या फेमस होना है या जो भी। आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, नॉट कि किसी ने वो किया मुझे भी करना है, वैसा नहीं। आपको जेन्युइनली क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, व्हेन यू गो फॉर इट उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होता है और सक्सेस भी मिलता है। टुडे राइट, देर इज़ सो मच ज्ञान एवरीवेयर, सोशल मीडिया, चैट GPT, देर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन दैट कन्फ्यूजिंग हो सकता है। करना सब कुछ है बट लैक ऑफ क्लैरिटी। सो आई फील स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग आपका पैशन क्या है इज़ द वे टू गो फॉर इट।
10: सबसे पहले तो मैं युवा को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, इट्स वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दैट। बींग वोकल इज वेरी इम्पॉर्टेंट
11: एंड it's very important to not judge yourself because there will be people around you who will make you feel insecure. There are people around you who will try to put you down. Never doubt yourself. Believe in yourself. Never compare yourself with anyone because your individuality is your superpower.
12: Last year लगभग 236 young girls की हमने जान बचाई जिन्होंने इंटरनेट में डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर क्विटिंग। That's the kind of effect cybercrime is having on the impressionable minds of our youngsters. Cybercrime ab crime nahi raha, cybercrime ab cyber terrorism mein tabdeel ho chuka hai. AIIMS, JNPT, cyber security departments, IB, RAW sab cyber attack ke shikar ho chuke hain. Aur aapko bata dun, jab Pahalgaon ke aftermath mein Bharat ne operation sindoor chalaya tha, to Bharat par 10 lakh se zyada cyber attacks hue the और उनमें से 1% करीब सक्सेसफुल भी हुए थे।
2: अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जैसे पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो, तो पहले आप खाओ ना। आपके चिल्ड्रन जो है उनको खाने को लगाओ, लेट लेट बी हैबिट। अगर आप वो बोल रहे हो कि उसमें केसर है तो आप केसर खाना चाहोगे ना, तो खाने दो ना, आपके फैमिली में खाओ, देन बाकी लोगों को बोलो। वाई अदर वे अराउंड।
7: इसके अलावा ये बताइए, सबसे ज्यादा डर क्या है आपके हृदय में?
2: ज्यादा
7: भय, डर किस बात का है?
2: मुझे किस चीज का भी डर नहीं है। मुझे ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा, मुझे समझ में डर किस चीज का है? नथिंग इन द वर्ल्ड यू शुड फियर ऑफ, ओनली वन थिंग यू शुड बी फियर्ड ऑफ इज डूइंग रॉन्ग थिंग, दैट्स इट।
7: यूथ ही जब ये कहता है कि हम क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है।
2: आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए यू आर पॉइंटिंग कि सिस्टम ऐसा ही है, क्या करें। यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम, ट्राई टू इम्प्रूव वट एवर इज इन योर कैपेसिटी। जिस दिन हम ये करना चालू करेंगे, उस दिन हम सिस्टम को ब्लेम करना बंद कर देंगे, और जिस दिन ये ब्लेम करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सुधर गया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बिट।
0: किसी भी मेट्रो सिटी को अगर एफिशिएंट रहना है, अप टू मार्क रहना है, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो सबसे अच्छी होनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द टारगेट विच वी हैव केप्ट इन माइंड। सो अभी जो भी बचा हुआ काम है वो अगले दो तो तीन साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। okay. और उसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस है दैट इज गोइंग टू सब्सटेंशियली चेंज।
9: आज के युवा से कनेक्ट करते हुए कि कितना सिविक सेंस उनमें है, और मुंबई को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए हमारी युवा क्या कर सकती है?
0: आई थिंक पहले तो सबको अपना सिटी ओन अप करना चाहिए। हम हमारे घर को तो गंदा नहीं रखते ना। अगर ये मेरा शहर है तो ये शहर को सुंदर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ BMC की नहीं है,
9: बिल्कुल
0: ये हर एक की है। अगर हर एक ने ये डिसाइड किया तो हम लोग उसको सुंदर जरूर रख सकते।
12: युवा इतने होशियार है, आपके एक्टिविटीज से जिस तरीके के एखादा मुद्दा लेके आप लड़ते हो उस पर वो ध्यान रखते हैं, तो आप एक्टिंग मत करना। अगर आप एक्टिंग करोगे तो ये एक्टिंग डेफिनेटली जेन ज़ी और युवा पीढ़ी उसके पकड़ेगी। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुत सारे युवा आए थे, जेंजीज आए थे, और उनका आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि एक मंत्री को घर जाना पड़ा।
7: तो आवाज है, मंच है, सुना भी जा रहा है, लेकिन क्या मौका दिया जा रहा है?
13: बिल्कुल मौका दिया जा रहा है, जो युवा सोचता है उसको धरती पर किया जा रहा है।
14: अगर सुना जा रहा होता तो हमें रस्ते पर उतरने की नौबत नहीं आती। सो आई थिंक द प्रूफ इज इन द पुडिंग।
15: वी आर द पीपल हु आर विलिंग टू क्वेश्चन the old systems that we don't believe in, and वो हम घर से कभी कभार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रोड पे आ जाते हैं। तो फिर रोड पे आते तो लोगों का ध्यान आ जाता है कि बच्चे सड़क पर आ गए। सबसे पहले तो ये सवाल कि क्यों बच्चों को स्कूल के बदले, कॉलेजेस के बदले, इंस्टीट्यूशंस के बदले उन्हें क्यों सड़क पर आना पड़ा?
7: मैं डिजिटल मीडिया पर थोड़ा आना चाहती हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर में जब आंदोलन हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर निकला कि क्या इस बार चुनाव इंस्टाग्राम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तक को उस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है।
16: 12 इयर्स अगो, 13 इयर्स अगो, उस समय भारत की छवि में देयर यूज्ड टू बी अ मैल नरिश्ड, भूख के साथ एक बच्चा जिसकी रिब्स दिख रहे हैं। आज वही 12 साल के बाद, आई एम नॉट सेइंग दैट,
14: आर यू टेलिंग मी दैट मोदी जी हैज मेड दैट मैल नरिश्ड बच्चा इनटू नॉन मैल नरिश्ड बच्चा? आई एम सेइंग,
16: अनीश भाई,
14: लाइक लेट्स हैव सम लिमिट्स।
16: अनीश भाई, अनीश भाई,
14: जय जय मोदी, हर हर कीपर। इतना
13: फिर से अभी मेरे को ये समझ नहीं आता हमें इस बात से भी क्यों दिक्कत है कि भारत की जो इमेज है वो दुनिया में अच्छी हुई, इसमें क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? वी हैड जस्ट 4 यूनिकॉर्न्स इन 2013, We have 250 unicorns today. ये है जो भारत की इमेज बनाता है। हमारे देश में 250 स्टार्टअप्स थे, DPIIT का डेटा है। आज 240,000 स्टार्टअप्स हैं देश में। ये है जो हमारे देश की इमेज बनाता है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर जो हमारा यूथ है वो एस्पिरेशनल है, वो स्टार्टअप्स बनाना चाह रहा है, वो जाकर के इनोवेशन करना चाह रहा है। ये है जो हमारी इमेज बनाता है। दुनिया को लग रहा है इंडिया इज ब्राइट स्पॉट। हम फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थे 2013 में, हम फैंटास्टिक 5 की इकोनॉमी बन गए 2026 में।
17: Freedom is very important, but without guardrails is a free fall. Mm. So that's where I strongly believe universities do have to set some benchmarks, some standards, some lines that should not be crossed. There are thousands of videos on YouTube freely available, how to build your biceps, your resistance training, etc. We still pay a lot and go to gyms. Mm. You need a trainer. You need somebody to watch you, look at you, correct you in your momentum, in your pace, and make you understand what it needs. So universities will exist, a coach will exist, but you have a lot of technological benefits.
18: And coming from a business family, I've learned that if the product is good, and then the marketing, and then the advertising, and then the reviews of the consumer and the customer, I feel these four things are the most important if you want a successful business. And anything and everything that you do with the right intention will always go in the perfect direction. And be it movies or business, if your intention is correct, your message is always reaches the right audience.
7: Ek quick rapid fire mein aapke saath karna chahungi. कोई ऐसी चीज जो एड देखकर कभी आप नहीं खरीदना चाहेंगे?
18: स्किन केयर.
7: एक ऐसा बिजनेस डिसीजन जो आप रीडू करना चाहें?
18: आई एम ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज टू थिंक अबाउट दैट, बट ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं अभी करना चाहती हूँ रादर देन थिंकिंग अबाउट मैं अभी रीडू क्या करना चाहती हूँ.
7: एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए?
18: You look so beautiful.
7: युवा को एक शब्द में आप कैसे, how do you, would you explain it?
18: I feel this generation is very ambitious and all of us are very hardworking and true to our dreams.
19: आज की जनरेशन हम लोग से काफी इंटेलिजेंट है, there is no denying the fact. इसमें एक चीज मेरा सजेशन है युवा को, सक्सेसफुल होने के लिए there is no work life balance in life. आपको जो इनिशियल टाइम है उसमें काम के अलावा कोई अगर आप बैलेंस ढूंढोगे तो देयर कुड बी लकी फ्यू विच वुड स्टिल सक्सीड. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट किसी भी ड्रीम को जब आप चेस करते हैं, जब आगे निकलते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं और वही जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं और जिसको आप फाइट करते हैं और उसके बाद आप उससे उभर के निकलते हैं, वही एक इंसान को सक्सेस दिलाता है.
20: When we are at the dilemma stage, whether we need to choose safe career or your passion. So I can suggest, if you are very passionate about doing something, so definitely you should try. Otherwise, you will have that regret with you, not doing it. If someone believes you, you work hard and prove them they are right. If someone not believes in you, work double hard and prove them they are wrong. That should be your idea. And second is, see, the challenges will be there in entire journey. The success will not come in overnight. It is a continuous process.
21: One who knows their why can figure out any how. अगर आपको वजह पता है, purpose पता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, so you will figure out कि कैसे करना है. I think it's very good time to be an entrepreneur in the country, क्योंकि आपके पास पूरा ecosystem है, आपके पास resources है, आपके पास ChatGPT, Claude है, basic से आपको सिखा सकता है कि entrepreneurship क्या होती है, even if you do not have any background in it. आप coding से लेके एक manufacturing machine कैसे काम करती है, सब अपने level पे सीख सकते हैं. Financial backing के लिए आपके पास resources हैं, you just have to find it.
22: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
23: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
24: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
23: अरे मेरे राजा.

0: मैं यूएस में 13 साल के लिए था एंड जब मैं यूएस में था, यूएस में इंडिया से भी ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं लोग. तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. व्हाई डोंट आई लीव द यूएस एंड आई रेज अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग इन इंडिया. इंडिया में लोग एडुकेटेड हैं लेकिन हम हेल्थ लिटरेट नहीं है.
1: अच्छा, दुनिया की 4 बड़ी MNCs ने आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा हुआ है.
0: सो आई हैव वन लाइन फॉर ऑल दीज ब्रांड्स. इफ यू सेंड मी अ लीगल नोटिस, आई विल गेट यू पब्लिकली नोटिस.
2: फनी रील या कॉन्ट्रोवर्शियल रील, एल्गोरिथम में क्या ज्यादा बिकता है?
3: इट्स वेरी इजी टू थिंक कि आज कोई ट्रेंड कर दिया तो वो चल जाएगा, बट देन यू ऑल्सो एज अ क्रिएटर हैव टू थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर आपकी एक रील फटती है तो जरूरी नहीं है कि आपकी बाकी 10 और रील भी फटेंगे.
2: हेमा, क्या ये सच है कि गुरु रंधावा कमेंट करते हैं और हायर कर लेते हैं?
4: मेरे लिए बहुत अच्छा था ये मूवमेंट जब उनका मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मेरे कलर को लेके बहुत बहुत बोला है लोगों ने, काली दिखती है, ब्लैक बेरी है, या कपड़े कैसे पहनती है, वॉक कैसे करती है, बहुत लोगों ने बोला है. बट जब गुरु सर ने मुझे सॉन्ग में लिया सो मुझे स्टैंडर्ड मिला, शी कैन डू समथिंग. एंड आज मैं यहाँ हूँ, थोड़ा मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है.
5: बट कैन वी टेल हर दैट शी इज डूइंग ग्रेट?
2: She's going wonderful.
6: I think everyone has different stories and we have a billion different stories. Itna sochne ki zarurat nahi hai, itna complicate mat karo. Phone uthao aur content banana shuru karo. What you would have been able to do in 10 years, 15 years, 20 years in corporate, agar aap content bana rahe ho to aap wo 1 saal, 2 saal, 3 saal mein bhi kar sakte ho.
3: Aur aap 2 tax slab upar to chale jaoge. I think.
5: Ronak,
7: oh, hi.
5: How are you?
7: I'm good. How are you, brother?
5: Good. Have you recovered from Rocky Sawant?
7: Yes, I'm trying. I'm still trying.
5: But a lot of people in the comments are saying that, you know, you were taken aback and you probably didn't expect that avatar of her coming.
7: I did expect all of it.
5: Okay.
7: I just didn't expect it to all be that much.
8: I think he was in awe of
7: her. I was in awe of her.
5: Really?
7: Yes, I was in awe of her. I was awestruck. Thank you. Yes.
9: Stand-up comedy is a very brutal profession. When it works, you feel a huge sense of achievement. And when it fails, it's so gut-wrenchingly horrific that most people stop doing comedy, which is the right thing to do for your mental health. So, and the few of us who still do it, I don't know why we do it, because the highs are very high.
8: As he said, it's quite unpredictable. Kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai. You might be thinking, oh, this is my audience, and you might bomb really hard. But the next day, you just want to redeem yourself. So you keep on going on stage and back to back cheese hotel, and of course money, and that's why we hang out with Warren.
10: Basically, I would say around the time I started working with a lot of the colleagues on stage in the industry generally, people were doing small bar gigs, small theater gigs, and it's really evolved into sort of being a cultural force overall. I don't want to get into the specifics of the numbers, but folks have gone from playing 200 seaters to a couple of thousand, some doing 5,000 seats. Brands interacting with us as if we're as legitimate an industry as any others. I think that's the best I can say without anybody's tax bracket becoming a problem.
11: Samaj Sev.

0: और समाज के लिए कुछ करना, मैं बोल सकती हूँ कि बचपन से मेरा एक उद्देश्य रहा। और आपका एक छोटा सा कोशिश किसी के ज़िंदगी में जब परिवर्तन लाता है, जब आप उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो वो जो आत्मसंतुष्टि, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, वो सबसे प्रेशियस होता है। और इसी सोच के साथ मैंने मेघा श्रेय NGO की स्थापना की और समाज सेवा से जुड़ी।
1: वर्स्ट पार्ट दैट आई सी विद Gen Z टुडे इज द डेथ ऑफ रियल इंटेलिजेंस। सिंस AI इज समथिंग दैट पीपल यूज एवरी सिंगल डे, तो वो अपना खुद का दिमाग यूज करना ही छोड़ देते हैं। मतलब ये दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? आप में से कितने लोग अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो गए?
2: इवन इन माई कंपनी आई कीप टेलिंग पीपल दैट गेट बेटर एट दीज टू थिंग्स। A, you should have as much context that people would not want you to leave the room. And second, judgment. I think what Ishan also said, right? Ki aaj ke din mein real intelligence is more important. And what is extremely important is if you can be the judge of what is good and what is bad. So I would just say that develop these two skills, have like great judgment and have so much depth and context ki koi aapko bol hi nahi sakta ki main aapke bina ye kar sakti hu.
3: Jaise aap jante hain, Nimaya Foundation hazaron mahilaon ko AI sikhata hai. तो हरियाणा में एक कॉलेज है जहाँ पे हमने एक लड़की से पूछा कि आपने क्या किया ये कोर्स के बाद, तो उसने कहा कि मैंने एक दादी दादा बॉट बनाया। मैंने कहा वो क्या होता है, तो उसने कहा कि मैंने ये देखा कि मेरे गांव या कम्युनिटी में ग्रैंड पेरेंट्स बहुत कम हैं, तो मैंने ना ChatGPT या जो भी उसने प्लेटफॉर्म को ट्रेन किया ताकि वो अपने युवाओं के साथ दादी दादा की तरह बात करे, उनको कहानी सुनाए। तो वहाँ से मुझे एक थॉट आया कि जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, जिन लोगों के पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उन लोगों के लिए AI तो एक पेंट ब्रश है और प्रॉम्प्टिंग समझ लो रंग है और कैनवस एम्प्टी है। तो विथ ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन क्रिएटिविटी, बट दिस पावर कि अब AI के द्वारा आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो पहले आप सिर्फ सोच सकते थे, वो पावर है।
4: मेरा बच्चा है 9 साल का है, उसे फास्ट बॉलर बनना था, मैंने उसे खुद ने मना किया है। मुंह से लेके टो तक इंजरीज है मुझे, बहुत ज्यादा। मुझे 15 stitches आए मुंह पे बॉल लगने पे। मेरा स्कैपुला डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा शोल्डर डैमेज हुआ है बॉलिंग करते करते, मेरा C6 C7 में आर्थराइटिस है, मेरा L3 L4 L5 5 fractures बॉलिंग के एक्शन की वजह से था, वो कभी हील नहीं हुआ। मेरा डिस्क प्रोलैप्स हुआ है बॉलिंग की वजह से, मेरा साइड स्ट्रेन कई बार स्ट्रेन हुआ है Grade 1 Grade 2 लेवल पे, मेरा डिस्क पूरी तरह से डैमेज है, मुझे बार बार आर्चेस वाली एक्सरसाइज अभी तक करनी पड़ती है। लेफ्ट नी में आर्थराइटिस है, राइट नी पटेला डैमेज है, लेफ्ट नी कार्टिलेज डैमेज है, राइट नी मेनिस्कस डैमेज है, मेरा टो फ्रैक्चर हुआ है। सो इस पूरे रूम में सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया फास्ट बॉलिंग के लिए, मैं समझ सकता हूँ।
5: आपका क्या एडवाइस होगा ये जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स?
6: द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर टफ टाइम इज योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, आई थिंक नोबडी कैन हेल्प यू।
5: यहाँ पे बहुत युवा ऑडियंस हैं, इनको आप बताएंगे कि वुशु है क्या?
7: वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, जेडी जैकी चान मतलब सभी कुंगफू में जाना जाता है उसको, जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखता था, और कंटेक्ट स्पोर्ट्स मतलब फाइट भी है, दोनों ऐसे जुड़ा जाके वुशु कहता है।
5: और आपके पास बहुत कम दिन थे प्रेपरेशन के लिए।
7: लास्ट ओवर में मेरा नाम आ गया तो हमको थोड़ा खुशी मिला कि इंडिया टीम में मैं शामिल हो पाया, पर भी कल टीम जाने वाला है और आज मुझे मेरा फिटनेस टेस्ट और फिटनेस का एग्जामिनिंग किया, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था, पर भी एक हमको मौका मिला है तो नहीं छोड़ना है और मैदान में दिखाना है।
5: और रोशबीना, वहाँ पहुँचने के बाद आप एक और सिल्वर मेडल जीतती हैं,

0: the sharpest global voices. Decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,

0: security measures must not necessarily disrupt public life or curtail lawful freedoms.
1: We are deeply grateful to the Supreme Court of India to have passed an order that restores faith in the people of India and in professional and faith by professionals in the system of justice in this country.
2: कि इंटरनेट सुविधा रिस्टोर कर दिया है. दूसरी बात ये कही गई है कि सभी मेट्रो स्टेशंस आज नॉर्मली चल रहे हैं. तीसरी बात ये कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल्स. दे कैन प्रोटेस्ट अनआर्म विदाउट वायोलेशन ऑफ द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. फिफ्थ इश्यू जो था कि लोगों का जो बाहर से ट्रेनें आ रही थी न्यू दिल्ली स्टेशन पे निजामुद्दीन स्टेशन पे स्टॉप नहीं दिया था, उनको नॉर्मल करने के लिए बोला है.
3: An urgent hearing took place in the Supreme Court on a Sunday after several lawyers approached the top court and pleas were filed questioning the Delhi police's action during yesterday's protest in the national capital. The plea raised several concerns, including detentions by the Delhi police, calling them illegal, and also the restrictions of movement of people across the city. Now, the Supreme Court has passed several important directions today. What exactly has the top court said? Firstly, the Delhi metros will remain functional normally unless and until some regulation is required to maintain law and order. Movement of people across the city will be permitted subject to the traffic conditions. The court has said that internet facilities will remain undisturbed as per law. However, it has clarified that it is not taking away centers or the government's power.
0: All right, we're cutting across to the BJP's press conference. Let's listen into what they have to say.
4: आज देखिए चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए गए. चेन्नई मेट्रो में 4,900 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 3,700 करोड़ और कराईकल पैरालम लाइन के लिए 7,750 करोड़ और चेन्नई वीओसी कामराज नगर में कार्गो क्रूज अपग्रेड करने के 3 पोर्ट्स को अपग्रेड करने का कार्य किया गया है. यह दर्शाता है. उसके अलावा रेल रोड्स में आप देख रहे हैं 7,611 करोड़ तमिलनाडु में रेल बजट के लिए. 77 स्टेशंस को रीबिल्ट अमृत भारत स्टेशन की तरह किया जाएगा. 48,172 करोड़ रुपए 48,172 करोड़ फॉर 45 भारतमाला प्रोजेक्ट. 63,246 करोड़ फॉर चेन्नई मेट्रो फेज 2 क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इवन इन अक्टूबर 2024. देन 41 सागरमाला प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन तमिलनाडु. 3 पोर्ट्स which get new projects today and 300 metric ton yearly cargo goal for Chennai, Kamraj Nagar, Kudalur mega port cluster by 2047. प्रधानमंत्री जी ने भिन्न भिन्न अवसरों पर किस प्रकार से तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर establish किया. The manner in which Prime Minister has upheld the prestige and esteem of Tamil language, Tamil culture and Tamil literature on the international stages. Aur ye Pradhanmantri ji ka, this is a statement by Honorable Prime Minister in UN General Assembly in which he was specifically referring the religious and literary aspect of the Tamil culture and the language.
5: आवाज ऑडियो
4: अब सबसे बड़ी बात है कि जब तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सिंगोल को भारत की संसद में रखा गया. व्हेन द सेक्रेट सिंगोल हैज बीन पुट इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग व्हिच वाज अ रिवर्ड सिंबल ऑफ eternal Tamil culture, then the Congress opposed. It was in May 2023. Then the classic Tamil Institute in Chennai was established. The Chola copper plate were taken back on 16th of May 2026 from Hague and Subramani Bharati chair at BHU.

was established by Prime Minister in September 2021. भारत में किस प्रकार से एकता बने, राहुल गांधी जी का लक्ष्य रहता है कि किस प्रकार से विभाजकता बने. राहुल गांधी इज कंसंट्रेटेड हाउ टू क्रिएट डिविजिबिलिटी एंड आवर एम इज टू अपहेल्ड द एक्चुअल यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर. दैट्स व्हाई काशी तमिल संगमम एंड सौराष्ट्र तमिल संगमम वर इनिशिएटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, विच वॉज अ वेरी यूनिक पिक्यूलियर एंड कोहरेंट इशू फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन. अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे. नाउ आई वुड लाइक टू पुट अप क्विकली, जस्ट लास्ट मंथ यू हैव सीन दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड थिरुकुरल टू पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट. थिरुकुरल इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड तमिल लिटरेचर विच इज हैविंग 1330 पद विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री चैप्टर्स एंड इट इज बीन गिवन to Russian President. Government of India has started Thiruvalluvar Cultural Center all over the world, and the first cultural center has been established in Singapore. I would like to ask Congress Party, from 1967 you are out of power since Tamil Nadu. Have you ever done anything of this sort? Then Prime Minister has announced the establishment of the Rajaraja Chol and Rajendra Chol statues when their thousands anniversary was established. Ab main ye bhi batana chahta hu, that shows our impartiality. When our government has decided its biggest policy change, that was the defense production and indigenous capability of India's defense capability, two defense corridors were decided, one in the northern India and other in the southern India. In northern India, Uttar Pradesh became the center. Anybody can think that UP में ठीक है, हम उस समय पावर में नहीं थे जब 2015-16 में हुआ, पर हम यूपी में पावर में आ सकते थे. द सेकेंड डिफेंस कॉरिडोर वॉज गिवन टू तमिलनाडु, इन विच वी आर नाइदर इन द गवर्नमेंट नॉर इन द अपोजिशन. दैट शोज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जस्टिफाइड जुडिशियस अप्रोच एंड इट्स पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स अपहेल्डिंग एंड अपब्रिंगिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ तमिलनाडु. दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाबलीपुरम में चाइना के राष्ट्रपति को लेके गए थे. राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपको पता भी है कुछ तमिल संस्कृति के बारे में, महाबलीपुरम का क्या महत्व था? वहीं से एक पल्लव किंग थे जिनका के नाम था बोधिधर्मा, और वो चाइना में जाकर दमो के रूप में विख्यात हुए एंड ही इज कंसीडर्ड द पैट्रियार्क ऑफ द जैन बुद्धिज्म. पूरे चाइना में वो एक पितामह के रूप में माने जाते हैं. यह संबंध था, परंतु यह संबंध कभी भी कांग्रेस ने इन चीजों को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के स्पीचेस में देख लें, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट बी नोइंग दिस, यू नो विच इज द मोस्ट कोटेड Indian classical text in the budget speeches in Indian Parliament, it is Thirukkural. तो ये दर्शाता है. और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई लगवाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, कि पहले जो झूठ की गूंज वो कर रहे थे, पुणे में जाकर उन्होंने सोचा कि महिला पुरुष में ही लड़ाई लगवा दें, स्मैश पैट्रियार्की करते हुए. अब सोचा उत्तर दक्षिण में ही कुछ लड़ाई लगवा दें, तो उनकी भाषा में लड़ाई की जो आकांक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी. बिकॉज इफ यू रिमेंबर काशी तमिल संगमम जो लास्ट हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट तक जो हिंदी में बोला था वो AI के द्वारा लाइव तमिल में ट्रांसलेट हुआ था. और अब भारत की संसद में 22 भारतीय भाषाओं का AI के द्वारा आप लाइव ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं. पहले होता यह था कि आप हिंदी इंग्लिश में तो बोल सकते थे, इफ यू वांट टू स्पीक इन अ रोल लैंग्वेज यू हैव टू गिव 1 डे नोटिस, ताकि उस दिन उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अवेलेबल रहे. अब कोई समस्या नहीं है. विद इन फ्यू ईयर्स राहुल गांधी जी, ये भाषा पे लड़ाने की आपकी आरजू दिल के

0: अंदर ही दफन होने वाली है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी किसी भी लैंग्वेज का ओरल और टेक्स्ट इतनी क्विकली और इतना हाई क्वालिटी का करने जा रही है कि यह मुद्दा अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, ये पिछली बार राहुल गांधी जी पुणे में बोले थे स्मैश पैट्रियार्की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। सिर्फ भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति एक ऐसी है जो हमारे यहां मातृशक्ति की आराधना करती है। मैं पूछना चाहता हूं, हैसियत हो तो किसी और से पूछ के दिखाओ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जब हम चंद्रमा के अछूते दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे तो उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा था। और ये जितने स्मैश पैट्रियार्की वाले उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां तो कहा गया है
1: भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
2: நண்பர்களே, இன்றைய இளைஞர்கள் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற தொலைநோக்கிற்கு மேலும் பலம் கூட்ட விரும்புகின்றார்கள். வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கு தேவையான புதிய கருத்துக்கள், புதிய தீர்வுகள் ஆகியவற்றால் பாரதம் மட்டுமல்ல உலகின் எதிர்காலமும் தீர்மானிக்கப்படும். இன்று உலகம் தீர்வுகளை தேடிக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த தீர்வுகளை அளிக்கக்கூடிய வல்லமை உங்களிடத்திலே இருக்கின்றது.
1: நண்பர்களே, आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा। टुगेदर वी विल डू इट।
2: நண்பர்களே, இன்று பாரதத்திடம் கணக்கில்லாத சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. இளைஞர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை இந்த பெரிய பின்னணியில் காண வேண்டும் என்று நான் விழைகின்றேன். இது உங்களுக்கான நேரம், இது உங்களுக்கான சந்தர்ப்பம். நமது இந்த கனவு கண்டிப்பாக நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. நாம் அனைவரும் இதை இணைந்து சாதிப்போம்.
1: Together we will do it. Together. நண்பர்களே, आज मैं आप सबसे मिलने यहां आया हूं। इसके पीछे भी एक दिलचस्प प्रेरणा है। हमारी गिरिजा अम्मा कुछ महीने पहले ही मुझसे कुछ बच्चों के साथ नागरकोइल में मिली थी। उनकी लगन, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और देश के फ्यूचर के लिए उनका डिवोशन, उसने मेरे मन पर एक अभूतपूर्व छाप छोड़ी थी।
2: நண்பர்களே, இன்று நான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன். இதன் பின்னணியில் கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்தூக்கம், உத்வேகம் இருக்கின்றது. நம்முடைய கிரிஜா அம்மையார் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக சில குழந்தைகளுடன் என்னை நாகர்கோயிலிலே சந்தித்தார்.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए और हम सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे डिमांड्स को। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया वेयर द स्टेट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजन्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक जंग लड़ रही है पूरे देश के नागरिकों के साथ। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है।
1: The political face-off over opposition's protests in the CJP stir has intensified, with Congress accusing the Modi government of attacking democracy and imposing an undeclared emergency. The opposition has sharpened its attack, accusing the government of suppressing the voice of the youth. The CPIM, meanwhile, has vowed to continue the protests until CEC Gyanesh Kumar steps down. Rahul Gandhi has alleged vote theft, election theft, and a crackdown on the protesting youngsters. Priyanka Gandhi Vadra maintained that the government has illegally detaining MPs and protesters and bringing Delhi to a complete standstill. The BJP has responded, accusing the opposition of attempting to create anarchy and destabilize the country after electoral defeats. The party maintains that governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi to substantiate his allegations.
2: CEC is a constitutional body. They have got independent, they can take independent decisions. But he is not allowing to them to take independent decisions. Why it is happening? Because he wants vote chori should continue. And whatever vote chori he has done, with that only he has formed the government in center and the states. It means that it is a conspiracy to snatch votes and fraud on democracy.
3: इसमें जरूर ये कहना चाहूंगी कि इस देश के देवतुल्य मतदाता ने 99 बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार करा है। ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन अराजकता का उभर कर आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बीच में। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस देश के देवतुल्य मतदाता ने दोनों को ही अस्वीकार करा है। जब वे सत्ता को धारण नहीं कर पाए जनादेश के थ्रू, तो अब वो अपनी हार के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
4: जो छात्र नौजवान गिरफ्तार हुए उनको सरकार रिहा करे। जो सरकार कमजोर होती है, जिसके अंदर डर होता है सरकार जाने का, वो अन्याय करते हैं। कौन नहीं जानता इलेक्शन कमीशन बेईमान है? कौन नहीं जानता इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है? कौन नहीं जानता कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है और बीजेपी के लिए इतने बड़े बड़े कार्यालय बना रहे? क्यों बना रहे हो कार्यालय? वहीं पर एक कमरा ले लीजिए या फ्लोर ले लीजिए, वहीं रहने लगो आप, कार्यालय वहीं से चलाइए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोट डालने आए लोग, ज्यादा से ज्यादा वोट बने। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वोट न बनवा पाए आम लोग और वोट डाल ना पाए आम लोग।
5: मैं मानता हूं कल जिस तरीके से आंदोलन का आह्वान किया गया और उसके माध्यम से जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करने की सोच को बल देने का काम किया जा रहा था, ऐसे में कल जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा इसे नियंत्रित किया गया, अपनी बातें आप रखिए, बातें रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं।
6: वो दुष्ट लोग जो देश के हित में अपना हित नहीं समझते, वो पापी लोग जिन्हें देश की तरक्की से तकलीफ होती है, जो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे आम जन को तकलीफ हो, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, ऐसे सब लोगों को मैं ये कहती हूँ कि माँ सद्बुद्धि दे और या फिर सजा दे। जो लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, देश हित में आगे नहीं बढ़ सकते, देश के अच्छे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते, उनका

0: दिल्ली वासियों का उनकी ओर से कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हम नहीं आने देंगे, ना ही दिल्ली को बंदर बनने देंगे और ना ही हमारी सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होने देंगे।
1: नाउ आवर नेशन बिकेम ए पुलिस स्टेट, द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज हियर। यू आर हियर इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द नेशन। वी आर अनेबल टू मूव फ्रीली टू द रोड। देयर every junction big barricades are there nearby Jantar Mantar. Now 11 layer barricades are there. Firoz Shah Road, big barricade. Janpath, Ashoka Road, Rezina Mark, everywhere barricades and thousands of police force. Why they are deputed this huge number of police force in the city?
2: Prime Minister Modi and Chief Minister Vijay share the spotlight in Chennai. A metro launch, a ride together, and the development push alongside Prime Minister's temple visit. Prime Minister also inaugurated the 14.5-kilometer Ponnamalai Vadapani stretch of the Phase 2 of the Chennai Metro project, but built at a cost of around 4,900 crore rupees. He also took the ride between this particular junction, bypass stations, accompanied by Chief Minister Vijay, offered prayers at a temple, with Chief Minister Vijay also present. He also visited IIT Madras to attend an event at the Brain Mapping Institute and interact with members of the academy community. Also in Chennai, he visited IIT Madras Brain Center. And the mission is to map over 100 human brains in three dimensions. He made an address and pledged to take Tamil Nadu's development forward with the Chief Minister, highlighting manufacturing and urban transport, stressing that stronger states build a stronger nation.
3: It is a pleasure to be in Chennai with all of you. This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion. Nanbargade, Mukhyamantri ke roop mein, मैंने राज्यों की एक्सपेक्टेशंस को खुद समझा, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने न सिर्फ उन एस्पिरेशंस को पूरा करने का प्रयास किया, बल्कि ये कोशिश भी की कि हर राज्य अपने एस्पिरेशंस गोल्स को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे कई बार करुणानिधि जी और अम्मा जयललिता जी के साथ संवाद करने का अवसर मिला था, और जब मैं पीएम बना तब भी जयललिता जी, ओ पनीर सेल्वम जी, ई पलानी स्वामी जी और एम के स्टालिन जी, इन नेताओं के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। सरकारें बदलती रही, लेकिन तमिलनाडु के डेवलपमेंट और यहां के लोगों की सेवा का मेरा संकल्प हमेशा अटूट रहा, और आज इसी संकल्प के साथ हम मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जी के साथ मिलकर तमिलनाडु के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा

0: होकर रहेगा। टुगेदर वी विल डू इट, टुगेदर वी विल डू इट, टुगेदर टुगेदर टुगेदर। आज इस अवसर पर मैं महान संत तिरुवल्लुवर जी को भी याद करूंगा। उनकी शिक्षाएं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। हाल ही में मुझे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तिरुकुरल का रूसी अनुवाद भेंट करने का अवसर मिला था। तिरुकुरल उन सभी लोगों के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शक है जो जीवन भर कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने अपने एक बहुत प्रसिद्ध कुरल में वो हमें सिखाते हैं कि कुछ सीखने के साथ ही उसे अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी सीख है।
1: Ayodhya has emerged as a political flashpoint, and for the right reasons. We have BJP with the Ram Temple narrative, an opposition who's giving a tough electoral challenge in the state. Ayodhya's symbolic importance has placed it at the heart of BJP's Hindutva politics in the state, making it a key battleground in the upcoming political contest. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to contest from Ayodhya. He's questioned BJP's confidence in its political stronghold. He's also accused the BJP of treating Ayodhya's residents unfairly and bringing local grievances into the political debate. Yogi Adityanath referred to Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya and responded with a counter one. He proposed that both leaders file their nominations from Ayodhya and test their political fortunes.
2: बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार।
3: आज वो अयोध्या एक बार फिर से राम राज्य के नए उदाहरण बनकर के त्रेता युग का स्मरण करा रही है। और मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आइए आप भी अयोध्या में नामांकन करिए और मैं भी अयोध्या से चलो एक बार किस्मत अजमा लेते हैं। तय हो जाए, आप भी आइए और मैं भी आता हूं। लड़ाई चेलों से क्यों? लड़ाई तो आमने सामने होनी चाहिए और उसके लिए मैं कह रहा हूं आइए आप भी।
1: US President Donald Trump has called for Ukraine to hold a fresh presidential election and openly suggested President Zelensky should be replaced. Now, these remarks come at a time when US is simultaneously seeking to end the war between Russia and Ukraine. Here's more in this report. Have a look.
4: It's a blunt message from the White House, one that could hit Ukraine harder than any Russian attack.
5: But I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: Speaking at the White House, President Trump accused Zelensky of failing to strike a deal with Moscow and said Ukraine needed new leadership.
5: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times, and he should have an election, and he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened. Ukraine-Russia should have never happened.
4: Trump has also blamed Kiev for continuing to strike Russian oil refineries, saying the attacks are worsening the global diesel shortage.
5: We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers.

0: dancers.
1: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
0: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
2: Marne se bada kya hoga?
0: As a journalist, I can say you're not alone.
1: So you can focus on what really matters. Watch Breaking.
0: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. All eyes on all that's happening in the national capital, the hearing at the Supreme Court, and all that's transpiring between the government and the opposition demanding the resignation of the Chief Election Commissioner. That and much more, but first the headlines. Prime Minister Modi, Chief Minister Vijay meet up in Chennai. Prime Minister flags off 14.5-kilometre metro stretch. Visits IIT Madras to attend an event at the Brain Mapping Institute. The two also visited the Jalankesh Keteshwar Temple to seek blessings. CGPs Abhijit Deepke, Ashutosh Ranka and Saurav Das released by Magistrate Court on condition that they won't breach peace for 1 year. CGP says that there has been no bond that has been signed to stop future protests. Deepke vows will hit streets again. Day two of the anti-CEC protests at Jantar Mantar, protesters see Gyanesh Kumar's resignation. Several protesters detained, opposition slams central government. Supreme Court takes note of the curbs in Delhi, asks centre to remove barricades unless unwarranted, warns against illegal detention. And 12 killed and over 300 injured in missile attack on Saudi's Riyadh airport. It marks the deadliest attack in any Gulf Arab country since the start of the Iran war. India condemns attack. Nepal hit by another flash flood. Landslide triggers flood. Villagers urged to flee. Nepal issues evacuation warning after landslide. Delhi police has released a new video of CGP founder Abhijit Deepke in detention. The police claims that Deepke was informed about his grandmother's death, but he was unrelenting to leave for the family emergency.
3: CGP ke purv acharan ke anusar, unhone purv mein di gayi undertakings tatha lawful directions ko follow nahi kiya tha. जब इन्हें पिछली बार परमिशन दी गई थी तब इन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया और इनके द्वारा जुटाई गई भीड़ द्वारा भारी पथराव आगजनी हिंसा की गई तथा सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान भी पहुंचाया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पूर्व में भी कानूनों व दिशा निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के मामलों तथा वर्तमान में सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली की सुरक्षा एवं नागरिकों के जान माल के बचाव हेतु दिल्ली के कई क्षेत्रों में धारा 163 BNSS लगाई गई, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े एवं प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं थी। इसलिए अभिजीत दीपके और उनके दो साथियों को कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर दिए गए विरोध प्रदर्शन के कॉल के मद्देनजर 10 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उक्त प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास अभिजीत दीपके जी की दादी के निधन की इत्तला पहुंची, ये दुखद समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मी उनके पास गई और हर प्रकार की मदद के लिए उनसे पूछा गया। फ्लाइट्स, कॉल्स या जो भी उन्हें जरूरत हो वो संवेदनशील भाव के साथ उनसे पूछा। उनसे लगातार पूछा गया कि उनकी पेरेंट्स से उनकी बात कराते, जो उन्होंने मना किया। एकदम से ऐसी न्यूज से उभरकर थोड़ा सोचने का टाइम भी दिया गया। फिर दोबारा से मदद के लिए पूछा। सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को गलत तरीके से चित्रित किया गया है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
4: Thank you.

0: Divyankar Tiwari joining us live from the national capital to give us more perspective on the story. Divyankar, give us more details. What else did the Delhi police say in its press conference?
1: जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से हो रही है कि दिल्ली पुलिस, चाहे वो प्रदर्शनकारी जो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, या फिर जिनको 10 तारीख के दिन हिरासत में लिया गया था उनके साथ दिल्ली पुलिस बुरा सलूक कर रही है, बुरे तरह से उनके साथ पेश आ रही है। और 10 तारीख के दिन जब अभिजीत दीप के आशुतोष टांका और सौरभ दास को हिरासत में लिया गया था तो अभिजीत दीप के की दादी के निधन की जो सूचना है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई और उन्हें फ्लाइट के साथ साथ जो भी मदद है वो उनकी तरफ से दी गई, जिसका वीडियो जो है वो दिल्ली पुलिस ने अब जारी किया है। चूँकि अब से कुछ देर पहले ही जो CJP के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये आरोप लगाया गया कि जब अभिजीत दीप के की दादी का निधन हुआ उसकी सूचना दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई, लेकिन जो मदद है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से सही तरीके से नहीं हुई, इनह्यूमन व्यवहार जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण जारी हुआ है, क्लेरिफिकेशन का एक वीडियो जो है जो उस समय जब अभिजीत दीप के की दादी की जो डेथ हुई उसकी सूचना दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो अभिजीत दीप को दे रहे हैं, तो वो अभिजीत दीप के उनका साफ तौर से यही कहना है, जो वीडियो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया उसमें कहा, अभिजीत दीप के की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे बात नहीं करनी है, पेरेंट्स से मैं बात नहीं कर सकता। हालांकि जो वीडियो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी हुआ है इसमें कई जो कट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, जो क्लीन वीडियो है वो सामने नहीं आया है। अभिजीत दीप के और जो कांग्रेस जनता पार्टी के पदाधिकारी उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सही से व्यवहार है, सही से सलूक जो है वो डिटेन जब किए गए तब उनके साथ नहीं हुआ। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब सफाई जो है वो पेश की है, एक क्लेरिफिकेशन का जो वीडियो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के ऊपर गलत आरोप जो है ये लगाए गए हैं। इसको लेकर DCP PRO जो है नेहा यादव उनकी तरफ से एक बकायदा डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक वीडियो जो है वो जारी किया गया और जिसमें जो बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी और अभिजीत दीप के की जो बातचीत है उसके बारे में जो जानकारी है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांकर ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड गिविंग अस दैट पर्सपेक्टिव। लेट्स मूव ऑन। CJP leaders Abhijit Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka, they've been released, but they insist their protests will continue. Security has been tightened. Police have handed the group a notice concerning their tweets. After his release, Abhijit Dipke accused the center of fortifying Delhi to protect the CEC and questioned what Ganesh Kumar was hiding. The release has been granted subject to certain conditions. The trio have been directed not to engage in any activity that breaches peace, to maintain peace, law and order, and to comply with the conditions for 1 year. The court issued a notice to the CJP soon after their press conference, this after CJP's social media posts. Now, the Kokra Janta Party says that the bond it has signed concerning the breach of peace, they argue that signing a bond which is about breach of peace does not mean that they will stop protesting. The group maintains that protest is a constitutional right and does not itself breach peace. You also have YouTuber Dhruv Rathi, who was detained from Gurugram residence yesterday and has also been released.
2: अभी अपने घर जा रहा हूँ टू बी विथ माई फैमिली, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई है तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वो तो पूरी दुनिया ने देख रखा है। एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी दिल्ली ठप कर दी थी, क्या है ज्ञानेश कुमार के पास ऐसा, क्या है जो उनको बचाने के लिए अपने लाखों करोड़ों लोगों को कर इनकन्वीनियंस की, बच्चों को पीटा, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए थे उनको तक डिटेन कर लिया।
3: हजारों की संख्या में देश भर से लोगों को डिटेन किया गया, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे उनको उठाया गया, उनके साथ मारपीट हुई। हालात इस कदर खराब कर दिए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि कल हम लोगों को फ्लाइट से किडनैप करके ये लोग लेकर गए।
4: इतने संख्या में अगर लोग मोबिलाइज होकर खुद ब खुद आ रहे हैं दिल्ली, वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट करना है, एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जाके प्रोटेस्ट करना है एंड अपना जो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश है, जो अपने डिमांड्स है उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten.
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
2: ही इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉलिटिशियंस ऑफ दिस सेंचुरी प्राइम मिनिस्टर टू 1.5 बिलियन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिचेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी He takes pains to remind everyone that despite his exalted station, he was and remains a man of the masses. Oh,

नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज. द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स. डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स. At the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. Our Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. This is A World Between Orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सैनिको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा
10: का राजा प्योर मसाला।
11: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
12: Meetha या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
14: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
15: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
16: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
17: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, we said maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
12: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
18: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
19: कुछ इससे भी अनोखा।
18: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
20: वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ द एनडीटीवी वर्ल्ड इंडिया जापान समिट।
21: डीप लोकलाइजेशन, व्हाट डज इट एसेंशियली मीन फॉर मारुति सुजुकी?
22: टू बी कॉम्पिटिटिव एंड टू बी जाइल फॉर डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस टू एनी डिसरप्शन। सो दैट्स हाउ वी सेट दिस डीप लोकलाइजेशन एज आवर नेक्स्ट चैलेंज।
23: हाउ डू यू सी द इंडिया यूएस रिलेशनशिप प्रॉस्पर?
24: आई थिंक गॉड वॉज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस। व्हेन पीपल टॉक अबाउट गॉड दे फॉरगेट दैट इट वॉज एन इकोनॉमिक बॉन्डिंग। इफ यू टेक अ लुक एट वॉट हैपन्ड अराउंड द कोविड, द कॉम्बिनेशन of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
23: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
25: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
23: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
26: Quad could be a catalyst rather than just a forbinger. Quad could be a facilitator of growth, security and development in the region. Then Quad will have more meaning to itself.
27: Joint declaration on economic security. How is that being guaranteed or protected between India and Japan?
28: Unless India and Japan were to work together, it would be virtually impossible to create a trusted strategic technology stack for Asia.
29: AI, deep tech, those technologies are reshaping the industry worldwide. In this context, India and Japan, large potential.
30: We can truly tell that the economic partnership between the two countries is now moving from old economy to new economy.
31: It is our absolute honor to invite our chief guest for the evening, Mrs. Aki Abe, for her keynote address.
32: Today, you held a wonderful India-Japan summit for me. It was a very meaningful day. Thank you very much for inviting me.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
11: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
12: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
13: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
14: How do you see the India-US relationship prosper?
15: I think Ford was an

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: to the Supreme Court of India to have passed an order that restores faith in the people of India and in professional and faith by professionals in the system of justice in this country.
1: ये हो गया कि इंटरनेट सुविधा रिस्टोर कर दिया है. दूसरी बात ये कही गई है कि सभी मेट्रो स्टेशंस आज नॉर्मली चल रहे हैं. तीसरी बात ये कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल्स. दे कैन प्रोटेस्ट अनआर्म विदाउट वायोलेशन ऑफ द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. फिफ्थ इश्यू जो था कि लोगों का जो बाहर से ट्रेनें आ रही थी न्यू दिल्ली स्टेशन पे निजामुद्दीन स्टेशन पे स्टॉप नहीं दिया था, उनको नॉर्मल करने के लिए बोला है.
2: The political face-off over the opposition's protests and the CJP stir has intensified. The Congress party is accusing the Modi government of attacking democracy, imposing an undeclared emergency. Opposition has sharpened its attack, accusing the government of suppressing the voice of the youth. The CPIM, meanwhile, has vowed to continue its protests until CEC steps down. Rahul Gandhi alleged vote theft, election theft, and a crackdown on protesting youth. We also had a word coming in from Priyanka Gandhi Vadra. The BJP has hit back, accusing the opposition of attempting to create, destabilize the country. After electoral defeats, the party maintains that governance cannot be dictated from the streets and has challenged Rahul Gandhi to substantiate his allegations.
3: Mr. Lula, you kill me.
4: I will not
3: move. Don't touch me.
5: जो छात्र नौजवान गिरफ्तार हुए उनको सरकार रिहा करे. जो सरकार कमजोर होती है, जिसके अंदर डर होता है सरकार जाने का, वो अन्याय करते हैं. कौन नहीं जानता इलेक्शन कमीशन बेईमान है? कौन नहीं जानता इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है? कौन नहीं जानता कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है और बीजेपी के लिए इतने बड़े बड़े कार्यालय बना रहे? क्यों बना रहे हो कार्यालय? वहीं पर एक कमरा ले लीजिए या फ्लोर ले लीजिए, वहीं रहने लगो आप. कार्यालय वहीं से चलाइए. इलेक्शन कमीशन का काम है कि वोट डालने आए लोग, ज्यादा से ज्यादा वोट बने. पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वोट न बनवा पाए आम लोग और वोट डाल ना पाए आम लोग.
6: मैं मानता हूं कल जिस तरीके से आंदोलन का आह्वान किया गया और उसके माध्यम से जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करने की सोच को बल देने का काम किया जा रहा था, ऐसे में कल जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा इसे नियंत्रित किया गया, अपनी बातें आप रखिए, बातें रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं.
2: Iran-backed Houthis have struck Riyadh's main international airport for the third time this week, killing at least 12 people and injuring 309 others. Saudi Arabia has called it a war crime, and U.S. President Donald Trump is weighing in the possibility of joining in for a response. We get you more in this special report. Have a look.
7: It's another day of attacks in Riyadh. Yemen's Iran-backed Houthi militants have struck Riyadh's international airport for the third time this week. At least 12 people have been killed and around 309 injured at King Khalid International Airport. Those reported dead include 4 Saudi nationals and 1 national each from the US, Jordan, Palestine, Syria, Sudan and Egypt, along with 2 Bangladeshi nationals. Operations at Riyadh's main airport have been suspended as crews assess the damage. Airlines have cancelled and diverted flights, disrupting air travel across the region. The Saudi-led coalition fighting in Yemen has condemned the strike as a full-blown war crime and a terrorist act targeting civilians. Meanwhile, in Washington, President Donald Trump has condemned the terrible

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। As global equation shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: Congress
1: according
0: by the BJP
1: who?
0: And across the world.
1: Where do you get this definition of protest from?
0: What is a chakka jam? What is a rail roko? What is a gherao? What is
1: a
0: march on
1: the road?
2: You know, Sharjeel Imam called for a chakka jam.
0: I'm not talking.
1: The courts have ruled that you're not supposed to do rail roko. Rail roko is illegal. No.
0: Very well. Please also tell that to the RSS, which they did about 98 times before in the 70s. They want to keep on talking about what happened five decades ago and what the government at the time, the Congress government at the time did. They will never tell you that how they went around burning government buildings, stopping trains, stopping buses, stopping public life. Now, I am not saying that anybody should be violent. It was wrong on the part of the RSS and the BJP, Jan Sangh, to be violent in the 70s. It would be wrong on the part of any political party.
1: Okay, quick rebuttal, then I'm going
2: to
1: open this.
2: There's a viral interview of Indira Gandhi doing the rounds where she says why she jailed Jayaprakash Narayan, Vajpayee and all of that for exactly this. So what is the BJP saying? Yes, it was correct then, it is correct now.
0: Kisi ne rail roki abhi? Kisi ne government building
2: kisi ne nahi kiya hai, but there was rioting. 20th ko rioting hua tha.
0: Rioting, I was on rioting the 20th of July protest.
2: We have the
0: I was about to be lathi charged thrice.
2: Policemen.
0: Hold on, nobody was pepper spraying at that point of time. Abhijit, you are a very cushy man. You don't like to go to protest. That is the problem with you.
2: Haan, I don't.
0: Had you gone on the streets, you would have known what the Delhi police was doing. They were not trying to disperse the protesters. They were trying to terrorize the protesters. I myself am a first person account to
1: that. Let's bring it down to the present. Let's bring it back to the present. How are you going to be noticed unless you raise your voice? Jaise ki kehte hai, sometimes you have to scream in order to be heard. Harshvardhan ji.
3: Nahi, Patuja, sabse pehle to koi adarsh protest nahi hota hai. Aur democracy mein protest aise hi hona chahiye ki sarkar agar nahi sun rahi hai to usko sunna pade. Lekin anarchy mein agar wo convert ho jaye, वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनकी, जिसको कहते हैं ना, कि उनका वैलिडेशन नहीं रह जाता, उनकी अथॉरिटी नहीं रह जाती, और कोई भी जो आंदोलन होता है, जिस समय वो हिंसक हुआ, जिस समय वो वायलेंट हो गया, वो खत्म हो जाता है. तिलचट्टों का जो प्रदर्शन था, अगर आप उसको ध्यान से देखें, उनको अलाउ किया गया. वो बिना परमिशन के जा रहे थे, फिर भी उनको अलाउ किया गया. सरकार की ये बड़ी गलती थी, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी थी, सरकार ने उनको ले जाके परमिशन दे दी. फिर कांग्रेस को परमिशन क्यों नहीं दी? अपोजिशन पार्टीज जो इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रही थी, अगर वो ये कहती हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो उनका राइट है. लेकिन जब वो कहते हैं कि 240 एमपीज के सामने आप पार्लियामेंट एनेक्सी में आइए और वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हाजिरी लगाएगा, ये एनआरकी है. अगर आप डिफरेंस करें, राहुल गांधी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, अपने सांसदों के साथ जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है. आकाशवाणी भवन में घुसते हुए सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो बदसलूकी की, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है. वो उसको आप जब धमकाते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस की भीड़ घुस जाती है, वो एनआरकी, क्योंकि आकाशवाणी कैंपस में आप ऐसे नहीं जा सकते. और जो ये सीजेपी का, जो ये तिलचट्टों का प्रदर्शन है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए. कई बार कहा जाता है ना कि जो आप कर रहे होते हैं उससे बहुत कुछ समझ में आता है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं ले जाती. सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाना चाहिए कि हमने इनको क्यों नहीं अलाउ क्यों नहीं किया, इस बार परमिशन क्यों नहीं दी. वो कह रहे हैं परमिशन हमें लेनी नहीं है. हु आर यू, तुमसे हम क्यों परमिशन लें? डेमोक्रेसी में परमिशन ली जाती है और परमिशन देनी होती है. लेकिन जब आप कहते हैं कि हम परमिशन लेंगे नहीं, वो एनआरकी
1: नहीं. बट दंडेया सिंह, कि आप परमिशन दोगे ही नहीं, हमें हम मांगते रह जाएंगे, तो यू नो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू एज अ विशियस सर्कल. वी विल कीप आस्किंग फॉर परमिशन, यू विल कीप डिनाइंग अस परमिशन, देन हाउ आर वी गोइंग टू प्रोटेस्ट? हाउ आर वी गोइंग टू रेज अवर वॉइस?
3: पंजा बहुत सीरियस पॉलिटिकल ग्रामर होती है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की. तिलचट्टों की कोई सीरियस पॉलिटिकल ग्रामर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एनआरकी पर काम कर रहे हैं. आप जरा सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र से शुरू हुआ जो मूवमेंट था, वो स्कूल ठीक करो पर गया था. स्कूल कहां के ठीक हुए? फिर पंजाब में वो प्रचार करने चले गए आम आदमी पार्टी का, और जैसे ही उन्होंने पंजाब में प्रचार किया, उसके बाद उनको याद आया कि अरे ज्ञानेश कुमार जो फरवरी 2025 में आया है, उसने 24 का चुनाव गड़बड़ कर दिया था, उसने 19 का चुनाव गड़बड़ कर दिया, तो वो कह रहे अब इस्तीफा दे दो. तो ये एनआरकी है. तो मुझे लगता है ठीक है, प्रोटेस्ट तो आप, प्रोटेस्ट का ये मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि आप ये कहें कि नहीं हम जो कहते हैं वो सब करो. डेमोक्रेसी में वो जनता का राइट है. पब्लिक इतनी हो जाएगी तो सरकार को मानना पड़ेगा.
1: ओके, लेट्स आस्क द पब्लिक व्हाट दे थिंक. व्हाट आर द क्वेश्चंस ओवर हियर? दिस यंग लेडी, यस.
4: माय नेम इज तनु, आई एम फ्रॉम वडोदरा, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट अ डेमोक्रेसी कैन नॉट आस्क सिटीजंस टू ट्रस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस इफ दे आर थ्रेटन्ड बाय द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल. So that is not real democracy. I believe if you are in a democracy, you should come transparently, you should ask your question, you should be accountable, you should be there to understand and answer the questions that the people have.
1: Abhijit.
2: 100%. So the question is, what question do you have that has not been answered?
4: So where is the accountability? Where is the transparency?
2: No. What specific?
4: This about the SIR. What is the transparency?
2: What is the transparency? Everything has been put out in public. Which particular aspect of the SIR? Because you're asking me a very open-ended question. So get specific. Because the only outstanding questions right now are those 97 people in Goa

0: it visible? Is it visible on the public domain? I mean, are you as a Gen Z, right? The previous protest, I mean, the protest should be without any, you know.
1: No, but is sitting at Jantar Mantar going to get you those numbers either? What are you achieving by sitting at Jantar Mantar?
0: 3 lakh crore votes has been removed from the account. Who's responsible? I mean, are they killing the democracy? Yes or no?
1: But how will you decide that? You will get that number. See, you will get that number, and Harshvardhan ji is saying, no, you're not killing democracy. You have gone with that question to the...
0: Why doesn't the Bharatiya Janata Party itself supports the movement then? See, this protest is against the Election Commission, right? Huh. I'm talking about the Election Commission here, who used to get awards previously. Huh. Now, there are about 45 political parties which has filed a plea against the Election Commission. And now, two election commissioners, there are a total of 3, right? Hmm. Which has the equal rights. One of them chairs the Election Commission. Now, the rest of these two,
1: what is your demand at Jantar Mantar? What is your demand at Jantar Mantar? Kya aap Jantar Mantar pe keh rahe
2: hain Narendra Modi?
1: Ha? Ki aap logo ko wapas add kar dijiye.
0: It's against the election commissioner who is heading it right now.
1: But
0: who
1: is
0: doing the favoritism to Bharatiya Janata Party.
1: But to what end?
0: Like previous, let me give you a fact here. Let's talk about the previous election commissioner, Rajiv.
1: Rajiv Kumar.
0: Present, absolutely Rajiv Kumar. Do you know? Without the qualifications, without the educational background, he's right now seated as a chairperson of HDFC, a 10 crore capping organization without the qualifications. Why? Because he has actually favored Bharatiya Janata Party.
1: Are you going to remove Rajiv Kumar from HDFC by sitting at Jantar Mantar? Are you going to add back 13 crore people by sitting at Jantar Mantar?
0: Let me tell you. Let me give you a fact.
1: What are you trying to achieve at Jantar Mantar is my question.
0: It's our rights, and that is what we've been doing for long time, till the time when our desh got free, right?
1: And basically they are asking for the removal of Gyanesh Kumar. Jayenge to sab kuch thik thak ho jayega.
3: No. They are asking for removal of Prime Minister Narendra Modi. Not less than that. ये पूरा का पूरा मूवमेंट आप सोचिए अभी आपके बीच में नहीं बोला
0: वो मानेंगे क्या चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए
3: चेंजेस डेमोक्रेसी में कैसे होते हैं भाई कम से कम थोड़ी तो पढ़ाई करके आओ डेमोक्रेसी में वोट से चेंज होता है डेमोक्रेसी में आपकी आपके मन में आ गया आई वांट टू चेंज ऐसे नहीं होता भाई थोड़ी तो
0: व्हेन योर राइट्स ऑफ वोट्स हैव बीन ऑलरेडी रिमूव्ड हाउ वुड यू वोट वंस यू फाइंड आउट दैट योर नेम इज नॉट देयर इन द इलेक्शन
3: लिस्ट मुश्किल ये है कि आपको समझाना पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी
0: नाम ही हटा दिया
3: है आपको समझाना पड़ रहा है डेमोक्रेसी में कैसे सरकारें बदलनी है ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर डिबेट में आए आप करेंगे हाँ हटा दो चेंज होना चाहिए चेंज होगा ना इलेक्शन होंगे चेंज होगा इलेक्शन होते ही चेंज होता है और जो आप 13 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं उसका पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन ने बताया डुप्लीकेसी कहां है कहां लोग एबसेंट हैं कहां लोग मिसिंग हैं कहां लोग डेड हैं क्या उनके नाम होने चाहिए और अभी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी सारे के सारे कह रहे थे एक वोटर है डुप्लीकेट वोटर
0: अबाउट 70 टू 75,000 वोट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम बिहार इलेक्शंस ओके After the tribunal court has ordered reinstated, about 91% names has been restored. किसने किए?
3: कोर्ट की वजह से किया गया. मुश्किल बड़ी है.
0: No.
3: थोड़ा बोलते हुए ध्यान रखना चाहिए. भाई आप बंगाल की बात है.
0: हाँ जी बंगाल की बात है.
3: There was not a single case. सुप्रीम कोर्ट की
0: बंगाल की बात है ना? Do you agree or not? आप करते नहीं. कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए.
3: बिहार
0: के भाई पहले तो नाम आप जो
1: Exactly. So sir, order तो कोर्ट से ही आए ना?
0: And about 91%
3: सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIR बिहार में हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप लेकर आइए केसेज हम पूरा का पूरा प्रोसेस स्क्रैप कर देंगे कोई लेकर नहीं आ पाया और उसके बाद पश्चिम बंगाल में
1: ओके वेट अ सेकंड
3: ये एक फैक्ट बता देता हूं पश्चिम बंगाल को लेकर लोग कहते हैं कि अरे ये देखो जुडिशियल में गया ट्रिब्यूनल में गया पश्चिम बंगाल में एप्रोप्रिएट रैंक ऑफ ऑफिसर ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं दिए जिसकी वजह से 750 जुडिशियल ऑफिसर को रिव्यू के लिए लगाना पड़ा
1: एंड अल्टीमेटली दैट डिसीजन आल्सो हैज टू कम जस्ट अ सेकंड इट हैज टू कम फ्रॉम द ट्राइब्यूनल्स इट डजंट कम फ्रॉम एनीबॉडी हु इज sitting on dharna. That order either came from a tribunal or it came from a court. This young lady has a question. Yes.
4: Mera naam Riya Sharma hai. Main puchna chahti hu ki hum kya fayda hai protest karne ka kyunki protest hote hain aur hame kaha jata hai ki humne actions liye hain aur fir wo cheeze dobara se hoti hain to is protest ka kya fayda hai hum kahenge ki ye cheeze ho rahi hain lekin hota to kuch hai nahi matlab jo actual state hai wahan par to same cheeze dohrai ja rahi hain
3: जैसे फॉर एग्जाम्पल
5: सो लुक
0: शी मीन टू से वोट छोड़ सॉरी गद्दी छोड़

0: गो ऑन, आस्क योर क्वेश्चन.
1: अभी जैसे सोशल मीडिया पे कई क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये फ्रीडम कहाँ है इसमें?
0: बताइए अभिजीत, what kind of crackdown is this? What happened to...
2: I'm answering these last two questions. One is, if you are, you can do preventive detention, number one. You cannot remove the right to movement, and that is why the Supreme Court today has come down on the government. Last time there was too little control, this time there is too much control. It is clumsy, it is overbearing, and they have vastly exceeded their powers, and the Supreme Court has come and corrected it.
3: So sir, everywhere I move there are barricades all over Delhi.
2: Barricades you can't protest about, you are allowed to move, na?
3: I'm sir, still allowed to move, you are allowed to move.
4: You are allowed to move. Deployed in Delhi to stop the
3: crime.
2: You can't determine that. You can't determine how you are allowed to move. You determine how you, if you are allowed to move or not. But
5: so if a bunch of protesters block a road or do a chakka jam, somehow it becomes anti-national. But when the Delhi police blocks pretty much half of the roads of Latin Delhi,
2: there is something called law and order. There is something called law and order when you have you have the right.
5: And where is the law and order in terms of the people who broke open skulls 2 months ago?
4: Remember when the Supreme Court
5: against them?
2: Do you remember when the Supreme Court knocked down this whole thing in Kerala? It started because of the CPIM Hartal May, where people were forcibly made to shut down their shops. They told them, you will not. Now a government can issue,
5: police is doing
2: let
5: that.
2: Me finish here. Where a government can, a government can I finish? Thank you. A government can pass curfew orders to shut those shops down. The right of a state to maintain law and order is a different from the right of a citizen to be able to not enforce that law and order.
0: Okay, go on. Emergency, I'll just come back to that emergency.
6: Yes. मेरा नाम योगेंद्र है. मेरा सवाल है कि SIR का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
0: Okay, we'll take that in a bit. Yes.
7: मेरा नाम रिया चौधरी है और मैं बात करना चाहती हूँ. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम बार बार SIR में मतलब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो हम क्या इस्तीफे के बाद में आप लोगों में से कोई उसका अकाउंटेबिलिटी रहेगा, मतलब कोई अकाउंटेबल या ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि बाद में हम इस्तीफा अगर हमें मिल गया तो कोई अकाउंटेबल है कि हम मतलब
0: उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे का प्लान क्या है? ज्ञानेश कुमार को हटा देंगे, आगे का क्या प्लान?
8: वाज वेरी फाइन, लेट मी टेल यू, अर्लियर द भारतीय जनता पार्टी हैज कम अप विद अ न्यू प्लान, न्यू लॉ, दैट द इलेक्शन कमिश्नर वुड बी अपॉइंटेड बाय द टू सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, है ना, और एक
2: सुप्रीम कोर्ट
0: the change is one thing, and if you are saying that everything was running very smoothly until the BJP changed this law, then how is it that there were 13 crore people who are ASDD, who are absent, duplicated, dead, are even present on the electoral roll? Aisa to nahi hai ki pichle 12 saal mein ye 13 crore log aa gaye hain. Obviously they have been accumulating. This young lady is saying that her father's name has not been struck off for the last 16 years. Clearly everything was not working beautifully even for the last 16 years, right? So yes, there is one part where you're talking about how the election commissioner,
8: for it, firstly who's accountable,
0: whatever accountability you have to seek, you have BLO to seek yahan, through the law, right?
8: Harji ke paas to do martaba aa gaya, see, very simply,
0: okay.
8: Yahan do martaba aa gaya, inke paas jo ek martaba bhi nahi hai.
0: Okay, just
8: how,
0: a second,
8: who is accountable?
0: Let's take a few more questions. Yes, go on.
8: Who is to do the accountability?
5: Ek mera question hai sabse, aap mein se kitne log first time voter hain, kiska vote ban gaya hai, कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मतलब एज जिनकी हो गई है फर्स्ट टाइम वोटर, मतलब वोट जिनकी हो गई
0: और वोट आप लोगों का बन गया, हाउ मेनी ऑफ योर फर्स्ट टाइम वोटर्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट योर वोटर कार्ड,
5: हाउ मेनी ऑफ यू,
4: करो यार दिखाई नहीं दे रहा है, हाउ मेनी ऑफ योर वोटर्स, सो अबाउट
5: हाउ मेनी ऑफ यू आर ओवर 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर के जो भी हैं हाथ खड़ा करिए एक बार,
4: सो यू आर ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स,
5: राइट? अच्छा, भी 18 से नॉट ले,
0: हां तो आपका वोट बन गया है, आपका वोटर कार्ड नहीं बना, आपने कोशिश की बनवाने की?
9: बनवाने की कोशिश की थी, बट देयर इज मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट है, मेरे फादर का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें थोड़ा नेम का प्रॉब्लम है,
10: मेरे फादर और मेरे जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है उनमें नेम का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आई ट्राइड बट उन्होंने कहा नहीं बनेगा जब तक चेंज नहीं करवाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपने फादर के उसमें डॉक्यूमेंट में पूरा चेंज करवाऊंगी तो फिर उनका जो प्रॉपर्टी और जो वो है वो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं बन पाया।
0: तो अभी आपका नहीं बना है वोटर
10: नहीं
0: का।
10: बना
5: नहीं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएंगे
11: एंड दैट्स द चेंज इन द फिलॉसफी ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अर्लियर इलेक्शन कमीशन्स फिलॉसफी वाज इंक्लूजन, नाउ इट इज एक्सक्लूजन।
12: हर्षवर्धन जी, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कितना गड़बड़ होता है?
8: आपके येलो हर क्या पे गलत होता है, दो दो मर्तबा
12: स्पेलिंग गलत होता है।
5: आपके डॉक्यूमेंट्स
12: आपके तो ठीक ही होंगे,
5: आपके डॉक्यूमेंट्स
12: की मजाक है, आपके कोई डॉक्यूमेंट
8: येलो दो या तीन मर्तबा जो तीसरी बार भी जो है आके जो चेक करके जाएंगे सर सही है।
0: ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन
13: सर? सीजेपी और ऑपोजिशन ने पहले ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही और एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सर जब सेम लोगों से उमर खालिद और सरजिल इमाम के बारे में क्वेश्चन किया जाता कि क्या वो एंटी नेशनल है तो कोई रिस्पांस नहीं आता, वो कहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा।
5: उनके दोस्त हैं।
0: ओके, वन मोर क्वेश्चन।
10: Myself, Birwa
8: Gaddi. That is judicial. Already the case is on, right? That is for the court to decide.
2: तो यहाँ पे बैठ के जो है ज्ञानेश कुमार पे judicial decision हो गया है?
8: तो क्यों होना चाहिए? हम तो मांग कर रहे हैं।
2: पर वो तो गद्दार है। वो गद्दार है before decision। पर उमर खालिद और सरजील इमाम देशभक्त है before decision।
8: To defend election commission. Are we talking? Is it there?
11: Abhijit and Harshvardhan ji have gotten their favorite ball. And now they want to play Damien from election commission.
8: दो जो अलग
10: विद्यानी वडोदरा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, टूडे आई एम 17, टुमारो आई एम गोइंग टू 18, लाइक नेक्स्ट ईयर। सो शुड वी ट्रस्ट द प्रोसेस? शुड वी वोट? हाउ डू वी गेट टू नो दैट आवर वोट आर गोइंग ऑर नॉट? हाउ डू वी गेट इट?
0: Okay. How do you trust the process when it is so?
5: May I take that?
0: I okay. Go on. Okay, just a second. Yes.
11: See, that is what the opposition has been talking about. This is the first time in history that the Election Commission has such a loss of faith and trust that a first-time voter or a to-be first-time voter is asking, I don't know where my vote will go. That was never a question.
0: How do you fix this loss of trust? Last 10 seconds.
2: First advice to you, never trust any government. Congress government, BJP government, Republican government, Democrat government, any government, all governments, it is the systemic nature of all governments to oppress and to lie. Okay? That is why you have checks and balances on all governments.
5: Is the current government the point is,
2: let me finish.
5: Just ask it.
2: Now, there is a very simple thing out here. You have to tick all the boxes yourself. You have to keep all your documents ready at all points of time. Create as much of a trail as possible so that you can prove your case at any given point of time. There is no other way out. Full
0: okay,
2: stop.
0: The binary is very simple. Process or protest. Which way do you think you are going to be able to achieve your ends? I think you've heard all the points of view. And for joining us today, thanks very much to our audience and to our panelists. Thank you.
14: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. Hindustan mile,
15: Hindustan se. Desh ka tire, JK tire.
16: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
17: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
16: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्टियोर
18: मसाला। Launch control 0 to 100.
19: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
20: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
19: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
21: RP
1: प्योर शाही पनीर मसाला डिलिशियस हेल्दी एवरीडे।